0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसन का कहना है कि वो बीजिंग में होने वाले अमरीका चीन सरबराह इजलास से कबल मंगल को जापानी वजीर आजम ताकायची सनाई और वजीर खजाना खातायामा सात्सुकी से बातचीत के लिए जापान का दौरा करेंगे। बेसेंट ने इतवार को सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि वो अमरीका जापान इक्तसादी ताल्लुकात पर बातचीत के लिए सरकारी और निजी शोबे के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने इक्तसादी सलामती को कौमी सलामती करार दिया। बातचीत का सिलसिला मुमकिन तौर पर बहुत से मौजूद का अहाता करेगा। तवक्को है कि फ्रीकैन ईरान की सूरत हाल पर रद्द अमल और नायाब धातों समेत अहम मादनियात के चीन के गालिब मार्केट शेयर की रोशनी में मजबूत दो तरफा तावुन के बारे में बात करेंगे। डॉलर के मुकाबले में येन की कदर में मुसलसल कमी के दौरान और ज़र मुबादला की मंडियों में होने वाली पेशरफ्त के बारे में भी ख्यालात का तबादला करेंगे। हंटा वायरस की मुश्तबा वबा का शिकार होने वाले तफरीही बहरी जहाज पर सवार अफराद ने सेहत की जाँच के बाद उतरना शुरू कर दिया है और हवाई जहाजों के जरिए मुख्तलिफ ममालिक का रुख किया है। ये बहरी जहाज इतवार की सुबह स्पेन के कैनरी जजायर में से एक यानी राइफ की बंदरगाह पर पहुंचा। जहाजरा कंपनी ने बताया कि 8 मई तक जहाज पर 24 ममालिक के तकरीबन 150 मुसाफिर और अमले के अरकान थे। स्पेन की वजीर सेहत ने बताया कि 14 हस्पानवी शहरी पहले उतरे थे और बस के जरिए हवाई अड्डे जाकर दारुलहुकूमत मैड्रिड चले गए, जहाँ वो एक अस्पताल में करंटीना और मुआइनों से गुजरेंगे। दीगर मुसाफिर और अमला बशमूल फ्रांसीसी, बरतानवी और डच शहरी माहरीन की जानिब से सेहत की चेकिंग के बाद बहरी जहाज से उतरे और ममालिक के चार्टर करदा हवाई जहाजों पर सवार होने के लिए बस के जरिए हवाई अड्डे की तरफ रवाना हुए। इत्तलात के मुताबिक पीर को भी उतरने का सिलसिला जारी रहेगा। फ्रांसीसी वजीर आजम सेबेस्टियन लिकॉर्नू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि फ्रांस जा रहे 5 में से एक फर्द ने परवास के दौरान अलामात की शिकायत की, जिसके नतीजे में 5 अफराद को अलग अलग रखा गया है। आलमी इदारा सेहत WHO ने जुमे को कहा कि जहाज पर सवार अफराद में से 6 अफराद के हंटा वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक हुई है, जबकि मजीद 2 मुश्तबा हैं। 8 में से 3 की मौत की इत्तला है। WHO का कहना है कि आवाम और कैनरी जजायर के रिहायशियों के लिए खतरा कम है। रूस और यूक्रेन अमरीका की तरफ से तजवीज करदा 3 रोजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कबल ऐलान किया था कि रूस और यूक्रेन हफ्ते से पीर तक लड़ाई रोक देंगे, लेकिन रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर मुजवजा मुद्दत के आगाज से ही मुहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने इतवार के रोज रूस पर 24 घंटों में 100 से ज्यादा मरतबा गोलाबारी और तकरीबन 10,000 ड्रोन हमलों का इल्जाम लगाया। रूस की वजारत दिफा ने मशरकी यूक्रेन में जंगबंदी की 16,000 से ज्यादा खिलाफ वर्जियों की इत्तला दी। दरियसना यूक्रेन के दारुलहुकूमत कीफ में 150 से ज़ायद अफराद ने, जिनमें गिरफ्तार फौजियों के अहले खाना भी शामिल थे, तस्वीर उठाकर उनकी जल्द वतन वापसी का मुतालबा किया।
1: अब आज की अहम खबरों की शह सुर्खियां। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए अमन मुजाकरात की अमरीकी तजवीज पर ईरान के रद्द अमल को कतई नाकाबले कबूल करार दिया है। ट्रंप ने इतवार को सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने अभी अभी ईरान के नामनहाद नुमाइंदों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल नाकाबले कबूल। उन्होंने मजीद कोई तफसीलात फराहम नहीं की। ट्रंप ने कबल अजी कहा था कि वो जुमे तक ईरानी रद्द अमल की तवक्को कर रहे हैं, जबकि तेहरान ने निशानदेही की थी कि उन्हें किसी डेडलाइन या फिर अल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं है। ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी ने इतवार को खबर दी थी कि ईरान ने सालिस मुल्क पाकिस्तान को जवाब भेजा है। अमरीकी सदर की इंतजामिया के एक आला ओहदेदार का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौरे चीन के दौरान ईरान की हमायत के हवाले से चीन पर दबाव डालेंगे। امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ وہ بیجنگ میں امریکہ چین سربراہ اجلاس سے قبل جاپانی وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سے بات چیت کے لیے جاپان کا دورہ کریں گے۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएच के वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 11 मई सोमवार रात 11:30 बजे वरुण तोमर और गुरजिंदर सग्गू से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ाई खत्म करने के लिए शांति वार्ता के अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया को पूर्णतः अस्वीकार्य बताया है। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने अभी अभी ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, पूर्णतः अस्वीकार्य। ट्रंप ने कोई विवरण नहीं दिया। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि उन्हें शुक्रवार तक ईरान की प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है, जबकि तेहरान ने कहा था कि उसे समय सीमा या अल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं है। रविवार को ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि तेहरान ने मध्यस्थ देश पाकिस्तान को जवाब भेज दिया है। सरकारी टेलीविजन और अन्य मीडिया के अनुसार जवाब में सभी मोर्चों पर, विशेष रूप से लेबनान में युद्ध की समाप्ति और नौवहन सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है, लेकिन इसके बारे में और जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। CBS टेलीविजन द्वारा लिए गए अमरीकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट के साक्षात्कार में उनसे ईरान की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर राइट ने कहा, हम जानते हैं कि इसका अंत कहां होगा, लेकिन हम वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं जानते। इस बीच ईरान खाड़ी देशों पर हमले जारी रखे हुए है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को घोषणा की कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान से दागे गए 2 ड्रोन विमानों को मार गिराया। कुवैती रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि देश के सशस्त्र बलों ने रविवार तड़के कुवैती वायु क्षेत्र के भीतर कई दुश्मन ड्रोन विमानों का पता लगाया और तय प्रक्रिया के तहत उनसे निपटा गया। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि ट्रंप इस सप्ताह अपनी चीन यात्रा के दौरान ईरान के प्रति चीन के समर्थन को लेकर उस पर दबाव डालेंगे। अधिकारी ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन में ईरान का मुद्दा भी चर्चा का विषय होगा और बताया कि ट्रंप ने शी से ईरान और रूस के बारे में कई बार बात की है। उन्होंने कहा कि इन वार्ताओं में दोनों देशों को चीन से होने वाली आमदनी, वस्तुओं और हथियारों के संभावित निर्यात पर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि ये वार्ताएं जारी रहेंगी। अधिकारी ने यह भी कहा कि ट्रंप उन चीनी कंपनियों के खिलाफ अमरीकी प्रतिबंधों के संबंध में चीन पर दबाव डालेंगे जिनके बारे में अमेरिका का मानना है कि वे ईरान का समर्थन कर रही हैं। ताइवान के मुद्दे पर अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और भविष्य में भी कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। ट्रंप और शी के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए एक नई व्यवस्था की शुरुआत पर चर्चा होने तथा एयरोस्पेस, कृषि उत्पादों एवं ऊर्जा क्षेत्रों पर बातचीत होने की भी उम्मीद है।

ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि पेइजिंग में होने वाले अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन से पहले वे मंगलवार को प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए और वित्त मंत्री खातायामा सात्सुकी के साथ वार्ता के लिए जापान का दौरा करेंगे। बेसेंट ने रविवार को सोशल मीडिया पर यह घोषणा करते हुए लिखा कि वे अमेरिका जापान आर्थिक संबंधों पर चर्चा करने के लिए सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा बताया। वार्ताओं में कई विषय शामिल किए जा सकते हैं। बाजार पर चीन के प्रभुत्व को देखते हुए उम्मीद है कि दोनों पक्ष ईरान की स्थिति पर प्रतिक्रियाओं और दुर्लभ धातुओं सहित अहम खनिजों पर मजबूत द्विपक्षीय सहयोग के बारे में चर्चा करेंगे। डॉलर के मुकाबले येन के लगातार अवमूल्यन के बीच वे विदेशी मुद्रा बाजारों के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। हंटा वायरस की कथित चपेट में आए एक क्रूज जहाज के यात्रियों ने स्वास्थ्य जांच के बाद जहाज से उतरना शुरू कर दिया है। इनमें से कुछ यात्री विमानों से अपने अपने देशों के लिए रवाना भी हो गए हैं। ये जहाज रविवार सुबह स्पेन के कैनरी द्वीप समूह स्थित टेनेरिफ के एक बंदरगाह पर पहुंचा। पोत संचालक के अनुसार 8 मई तक जहाज पर 24 देशों के लगभग 150 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। स्पेन की स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार स्पेन के 14 नागरिक सबसे पहले उतरे, जिसके बाद उन्हें बस से हवाई अड्डे ले जाया गया और वहां से उन्होंने राजधानी मैड्रिड के लिए उड़ान भरी। मैड्रिड के एक अस्पताल में संगरोध में रखकर उनकी स्वास्थ्य जांच की जाएगी। फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड्स के नागरिकों सहित अन्य यात्री और चालक दल के सदस्य भी विशेषज्ञों की स्वास्थ्य जांच से गुजरने के बाद विमान से उतरकर बस से हवाई अड्डे के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां से वे अपने अपने देशों के लिए चार्टर्ड विमानों पर सवार होंगे। खबर है कि जहाज से लोगों के उतरने का सिलसिला सोमवार को भी जारी रह सकता है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि फ्रांस आ रहे 5 लोगों में से एक ने उड़ान के दौरान लक्षणों की शिकायत की थी, जिसके परिणाम स्वरूप अब सभी 5 लोगों को संगरोध में रखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शुक्रवार को बताया था कि जहाज पर सवार 6 लोगों में हंटा वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 2 में संक्रमण की आशंका है। इन 8 में से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO के अनुसार आम जनता और कैनरी द्वीपवासियों के स्वास्थ्य को खतरा कम है। रूस और यूक्रेन अमेरिका द्वारा प्रस्तावित 3 दिवसीय संघर्ष विराम का उल्लंघन करने के लिए एक दूसरे की लगातार आलोचना कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि रूस और यूक्रेन शनिवार से सोमवार तक लड़ाई रोक देंगे, लेकिन रूस और यूक्रेन प्रस्तावित अवधि की शुरुआत से ही एक दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाते आए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रविवार को रूस पर आरोप लगाया कि उसने 24 घंटों में 100 से अधिक गोले दागे और लगभग 10,000 ड्रोन हमले किए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष विराम के 16,000 से अधिक उल्लंघनों की खबर दी है। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में बंदी सैनिकों के परिवारों सहित 150 से अधिक लोगों ने हाथों में सैनिकों की तस्वीरें लेते हुए उनकी शीघ्र वापसी की मांग की। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/हिंदी पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।